जोजोलो पाथौ नेपाल सम्बन्धिन्छ सबी खुद गुलना थो द्वितीय थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार रोलपया थवा गाउँपालिका पाँच कोटल बारे मडिको वो गुवा नपा चलखलाना झिमा मनु लहागु दु चलख निमा मनु कापाजुगु दु दासा सोमा अजनतना चङ्गु नेपाल प्रहरी थापु दु चलखे लाना तस्क खापा जुपी निमा सित वासा नि बुटौल यङ्क गुदु अधियाना तना चोपी सोमा सित माले गुज्या मडिका न्याका तया गु जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा जानकारी बिगुदु चलखन लाना सिपी चिन्चा त दुमा शान्तिपुन मगर खुइद दुमा कमल बहादुर पुन मगर चेत दुमा मनखना पुन मगर हे ज्ञा त दुमा दलबहादुर पुन मगर चे ज्ञा त दुमा हस्तकला रोका मगर पी लागु खसा थिएन चलखया चुसिका जलाखला जिल्ला प्युठान पाखे थेङ्कको अवस्था सीमा लुया वोगु लुया वो पिन थमा पाँच हेत दुमा अशोक पुन मगर सुइपे द दुमा महेन्द्र घरती खुइ खुद दुमा मणिपुन मगर सुइपे द दुमा विष्णु धैमा जुन कुमारी पुन मगर वो चे द दुमा बलबहादुर पुन मगर पिख चलख लाना निनी दुमा हिमाल पुन मगर व निया त दुमा सञ्चय घरती मगर कापा जुया दिगु दु अथियाना चलख लाना गुद दुमा असिमपुन मगर चे द दुमा अजम्बर पुन मगर व नेनी दुमा लिल बहादुर पुन मगर तना चोङ्गु दु तना चोङ पिता माले गुज्या नाका तगु दु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा रोल्पाया थवा पाँच कोटल बारे चलखन हना सिपी व तनाचो पिनिगु चाकाया तकया दुःख पङ्का दिगुदु रासोपाया महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य मिग विज्ञप्ति पिथना दिसे तनाचो पिन त माले गुज्या व लिचो लागु लगा थते उदार राहतो घापा जु पिन त ढेवा म्याक वासा व्यवस्था या त व जोखिम जागु लागा या मसिका याना सुरक्षित हासे स्थानान्तरण या त सरकार नापा इनापेना दिगुदु सुदूर पश्चिम प्रदेश या प्रदेश प्रमुख नजिर मिया प्रदेश सभा सदस्य यता नुमा मुख्यमन्त्री पद या नीति दावी पेश या यता इनाफिया नदिगुदु मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पसमिग बियादिगु राजीनामा स्वीकृत या सेम प्रदेश प्रमुख मिया संविधान या धारा 168 उपधारा 2 कथम मुख्यमन्त्री पद दावी पेश या यता प्रदेश सभा दुज यता इनाफिया नदिगु प्रदेश प्रमुख या कार्यालय धागुदु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अथेङ्याला लिपा नेपाल यहाँ छाया दिगुदु वङ्गु भदौ 24 गते जेएनजी आन्दोलन या झोले तसक खापा जुमा वेकङ्याला लिपा वासा नीति सिङ्गापुर जुसे हङकङ ठेङ्का डिगु ख पिउसा जुयानी पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा मिग थ गुदे लिहा छाया दिगु ख वेकयाता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लसकुसा या यता कङ्ग्रेस या चोसा बह पि नेता पिन ठेङ्का डिगु ख चोसा बहमा नेता थ नेता जुया मजुस नेता जुया मकु राष्ट्रिय आजीवन नागरिक जुया यहाँ वयागु व विनम्रता समर्पण व प्रेम या नापा सेवा या त हत्या चयागु नेतना दिगुदु पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा कङ्ग्रेस मुख लोकतान्त्रिक इतिहास कुबीको दल जक मजुसे दशकौँ या राजनीति सङ्घर्ष सहयाना अस्तित्व मर्यादा माक तेता तालागु पार्टी जुगु कना दिल राष्ट्रिय सभा आन्तरिक वायु सेवा या भाला नापाया विधेयक 2083 दति बिचाया मधेको प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति आगुदु थोयान्य विधेयक दति सल सलहङ्गु विशेष अलिसभ्य दिशे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्करास पौडेल युरोपियन युनियन या हवाई सुरक्षा सूची संचिकेत अतिथि बालागु ज्यात याना चोङ्गु व अथे खुला छुन छु लिचो पिहावैको भलासा कयागु दया दिगुदु मन्त्री पौडेल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अनुसन्धान याइगु प्रतिवेदन ल ल्यागु नापा अधिकार थप्न हेतयागु हुनि हवाई सुरक्षाके हात्या तस्वागु दया दिल मन्त्री पौडेल विधेयक वे थुङ्कानी जहाज होल्डिङ जुइगु इलेहे उडान मजाइगु यात्रु तेगो हल जोल मसेनीगु थे जागु हाठ्या त नहङ्किगु हवाई यातायात अझ उप डिसी लाकिगु सुरक्षित विश्वसनीय देखे त ग्वालिथेनीगु दया दिल सलस सांसद त्यस हवाई सेवा या त सुरक्षित देखेको याना कानुन देखे मागुली बबिया दिसे आन्तरिक वायु सेवा या त सुरक्षित दिसी लायक व गुणस्तरीय व भालाकुबीको देखा हवाई यात्रा व यात्रुतेको अधिकार संरक्षण जुई मागु ध्या दिला राष्ट्रिय सभासँग अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल आन्तरिक वायु सेवा या दायित्व नापाया विधेयक दति संशोधन प्रस्ताव ते यकोपि सांसद त्यस संघीय संसद सचिवालय संशोधन दर्ता यके फैको जानकारी ब्या दिला अथ्याना राष्ट्रिय सभा या मिगया बैठके कानुन या
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम दलितया मौलिक हक छेलापलाया नीति दलितया हक अधिकार व विकास नपाया विधेयक देके मागुली बबिया दिल सांसद सैन्यको नेसाली शासन कानुन मन्त्री गौतम व्या निनु सार्वजनिक विधा विग व्यवस्था पुनरावलोकन या मागु छुने ज्याखा मधुगु धका द्वातिका दिल मन्त्री गौतम व्याले निनु विधा विगु मेगु दिन गुताइल निषेय कार्यालय च्याकी गुली सेवाग्राह या त अझ अपुगु कर्मचारी श्रमिक तेगु मनोबल मतिना जागु कार्य सम्पादन प्याछी कथ लिचोलाना चोङगुले कार्यकुशलता उत्पादकको त सेवा गुणस्तर बोलङ्के त ग्वाली ठेङ्गु थ्या दिल थ्याय बैठक संसद नसजोरियाको ग्यास अभाव महँगी हाकुको बजार नियन्त्रण या त सरकारी ध्यानको सल्लाह दिगु ख संसद तनुहे हाइड्रो निर्माण या झोले सेती खुसिया बहाब यी गुली अन जखया जलाखला तेगु लागा लजगा नापा तोतेमाको अवस्था बोलङ्गुली हाठ्या जेङ्केता बबिया दिलसा राष्ट्रिय सभा मेगु बैठक भदौ 1 गते 27 जुलाई झिङ्या गु मिनेटे चुनिगु गोसादु सांसद तेसा रासायनिक साया पलेसा प्रारङ्गिक सा छिलेता किसान तेता वाता बी मागुली ब बिगुदु प्रतिनिधि सभाया कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति मिग चोङ्गु बैठक सांसद तेसा किसान तेसा रासायनिक सा छेली बले चाया उर्वरा शक्ति कमजोर जुया होना चोङ्गु व नसा जोलखे नापा लिचो लागु मानव स्वास्थ्य के तस्क बामलाक लिचो लागु धासे बुलुहु जैविक सा या छेला बुला या त उपके मागुली ब ब्यादि गुदु सरकार थप न हे प्रारम्भिक सा उद्योग सञ्चालन या मागु सरकार या प्रस्ताव सोया मजुसे किसान तेगु बुज्या या उत्पादन सोया कृषि अनुदान बी मागु दासेन संसद कृषि प्रधान दे या किसान तेसा सा अभाव या समस्या समुक्ति दे मागुली बबिया दिल बैठके चा वैज्ञानिक रोशन बाबु ओझा कृषि स फ्यागु अथे नेगु प्रतिशत बजेट रासायनिक सा न्याबले खर्च जुइगुली थो ढेबा जैमिक सा उत्पादन या लागा छेला बुला या त सरकार या त इनाम या नदिगुदु समिति सभापति अशोक कुमार चौधरी दपति किसान ते संस्था या मखनीगु हाठ्या नङ्केता वैकल्पिक सा या सम्भावना विशेष मध्यक सहलयना सरकार या त मागु उज बिता इनाफ्याना दिल प्रतिनिधि सभा कथया महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठक सांसद पिसन जातीय विभेद व छुवाछुत समाज कलङ्क जुगु दासे थुकिया त नहङ्केको नीति शिक्षा व जनचेतना तब्याके मागु धया दिगुदु समिति मिगचोङ्गु बैठक राष्ट्रिय दलित आयोग ज्या कारवाही व प्रगति नपाया सलसन सांसद त्यसमा दलित समुदाय गरिबी न्यूनीकरण शैक्षिक सामाजिक व आर्थिक विकास यता केन्द्र खेतया बजेट दिएके मागुली बबिया दिगु ख परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय नेपाल सगुची नीति सिद्धान्त यता कया दृढ जुयागो नेपाली भूमि या त चिन हित अख छेला बुला मजुके गु बचाउ लिसा कया दिगुदु वैकला नेपाल व चिन दथुया कूटनीतिक स्वापु पञ्चशील सिद्धान्त बालामा जलाखला सदा दया वया चङ्गु सहकार्य समानता समसिन मेमासिया भावना या त हना देछागु लिधंसा दया चङ्गु धया दिल नेपाल व चिन दथिया कूटनीतिक स्वापु या ने छ दया दमुज्या लसता 2026 नेपाल चिन मैत्री लघु भिडियो झेन्टे बलाया शिर्पा लल ह्यागु ज्याझोले मिग गोसा गोगु ज्याझो या त कघना दिसे परराष्ट्र सचिव राय थुगु सी या छिगु कूटनीतिक पात्रो छगु दसु जक मजुसे चिर स्थायी स्वाफुया नीति प्रमाण जुगु धया दिल आन्दोलन याना चोम्पी लघु वित्त पीडित सरकार दथे मिग नेगु धलया सम्झौता जुगुदु लघु वित्त संस्था या समस्या नङ्केगु नीति निसोङ्गु समिति सरकार सिफारिस यागु हाठ्या खेलापी लघु वित्त ऋणितेगु पुनरुत्थान या नीति ज्याजो हेगु नापाया विशेषण सहमति चुलागु ख नेपाल आयल निगम ग्यास या महामधुको कथा मौजात मतेता सचेत याकगुदु मिगछको विज्ञप्ति पिथना निगम बजारे ग्यास या कृत्रिम अभाव बोलङ्की पिन्ता ग्यास तेगु व्यावसायिक प्रतिष्ठान या त कारवाही यागु ख्यासो नापा बिगु ख सर्वोच्च अदालतले विश्व प्रेस काउन्सिल उपाध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिक या प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ यता थुना मुक्त या यता माघ्यास रिट निवेदन दर्ता याको गुदु पत्रकार श्रेष्ठ यथा समयकया कला सरस्वती श्रेष्ठ मिग थुना मुक्त या यता माघ्यासे बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता याका दिगु ख रिट निवेदन छुन मामुदेको खजा मयाक जोना तगु धासे तोतेता इनाप्याना दिगु ख प्रहरी बुधबार चाने वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ यता जोना यङ्क गुख
ताप्लेजुङ या स्वापुतै पी निकाय प्रतिनिधि मिगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामी छाने नापा नाप्लाना सडक तब्या के कु नीति जिल्ला या विकास निर्माण या थिति विशेष अध्ययनको सल्लाह दिगुदु। ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघ या अध्यक्ष नारायण थापा नापा या प्रतिनिधि मण्डल सभापति लामी छाने नापा नाप्लाना मेची राजमार्ग कथन लाइगु फुङलिङ नगरपालिका 8 खोक्से खोलासँग सुकुटे सुकेटार तकया सडक सीमा पुनरावलोकन नीति कुतयाना बिता इनाफ यागुख सडक डिभिजन कार्यालय इलाम वङ्गु जेठ 13 गते मेची राजमार्ग या सडक सीमा कथा सडक या केन्द्र निशेन जख झिङ्यागो झिङ्यागो मिटर दुने लागु संरचना चिकेता सुचपी थङ्गुख विक्रम सम्बत 2072 साले सरकार मेची राजमार्ग या मापदण्ड सडक या केन्द्र निशेन जख झिङ्यागो झिङ्यागो मिटर कायम यागो कोसिना धुङका थो लागाया जग्गा डिका टगुदु। बेनी जोमसम या कोराला सडक आयोजना मुस्ताङ या छुसाङ कागबेनी 10 किलोमिटर सडक देखिएको जान्याकगुदु निचागु करोड हे चेन हेगु लाख ठेवाया ठेवाख 2084 असार 24 गते तक पोङकेगु सम्झौता नापा सडक देखेता सनागु आयोजना या प्रतिनिधि सागर सुवेदी जानकारी ब्यादिल थो खण्ड या ठेवा निगु अर्ब 2 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला खालिजुया छुङ्गु पदाधिकारी या पदपूर्ति या नित्य दरखास्त आह्वान यागुदु प्रतिष्ठान एन 2068 कठ खालिजुया चोम्पी शिक्षा अध्यक्ष रजिस्ट्रार डिन व निर्देशक पद तेगु खालिजुया चोङ्गु पदपूर्ति या नीति आवेदन प्रक्रिया न्योज्या कागु प्रतिष्ठान उपकुलपति डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर सूर्यमान मिन्याङबो जानकारी ब्यादिगु ख। नेपाल प्रहरी वैदेशिक लजकाया नीति क्यानाडा छोया बिगु धासे झिन्नीगु लाख चेत ठगियागु दोपस छमासित जोङगुदु जोमा सिराहा जिल्ला सिराहा नगरपालिका 7 छेदुमा आ येल महानगरपालिका 5 टिकाथली चुनीमा सुई निदा दुमा सुशान्त सिंह जुगु ये उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जानकारी बिगु ख। आदेश पनि अबुख रसिया राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन कुरिल द्वीप या भ्रमण यागु थासे जापान कुङखिङगुदु रसियाली राष्ट्रपति पुटिन निगुदे दथुया स्वामित्व याता कया कचव जागु इतुरूप टापु ठेङ्कानी जापान कुङखिङगुख कुरिल द्वीप या पेङ्गु टापु मध्य कचव जुया चुङ्गु इतुरूप टापु याता जापाने इतो रोफु तका मसिकादु इजरायली सेना कारवाही या झोले पालस्तानी छेजयाता छेतोते त उज बिगुदु पश्चिमी किनारा या क्रुसा गामे इजरायली सैन्य कारवाही या झोले अनया पालस्तानी छेजयाता थगु छे व सम्पत्ति तोते त उज बिगु बिबसेने थङ्गु ख गामे छे दुपे इजरायली बस्तीतेगु बासिन्दा तेसा छेतोते छे तोते ता व अन दुगु मता व तोनेगु ल नापा बन्द याना बिगु दका दुख पङ्क गुदु इरान हर्मु जलमार्ग जलमार्गे अमेरिका या दयाचङ्गु नियन्त्रण लिना चोङ्गु थागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प या थो दाबी अस्वीकार यासन रणनीतिक जलमार्ग दिना चोङ्गु व तेह्रान तया तगु शर्त पु मङ्कु तले थो लम्पु मचाएको धागुदु थो नापा महत जागु समुद्री मार्ग याता कया अमेरिका व इरान दति कचौँ अझ त धङ्गुदु। आ मौसम या जानकारी थौ गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली पहाडी लगाया यको थासे कोशी बागमती प्रदेश या हिमाली पहाडी भूभाग या छुन थासे मला नापा लाप्चा तोया भचिचा तस्कौँ वाइको सम्भावना कुबिगुदु गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली पहाडी तराई लगाया म थासे नापा बागमती प्रदेश या पहाडी लगाया छगुनीको थासे आफ्ना वाविगु सम्भावना कुबेगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि पेघौले ये सुनिगया क्वाज नि च्यागु डिग्री सेल्सियस जति चोनन्दासा थौ निने ये सुनिगया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु दुकुमादु थौ सुथे ये सुनिगले याता इजुया निन हेगु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनिल खुता इजुया पि च्यागु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ

प्रस्तुत छ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

0: लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालु यान्दे लाला छेपाङी विक्रमसम्म 2083 साल साउन लाला छेपाङी चुइसेकु सुङ्ग्रे शुक्रबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेन्बुला ना सूर्य मोक्तान दिम्लोन सुदन गुरुङ से कारागार ठिम्दा दुई अनुसार लसोबारी सरकार से तयारी लाबन मला विशेष संक्षेप मला प्रतिनिधि सभा ठिम न्यायथिन मिलैपो समिति लतिनिटी बची साङ्ग्रे लिङ्मो थान्सिबान दिम्लोन गुरुङ से झेल निम्बोबा निर्दोष जेन्जी भेन्दुवा प्रतिशोध किनमा घे लासेला आरे विशेष संक्षेप हिन्ना दिम्लोन गुरुङ से जेन्जी आन्दोलनला मुद्दा याइसी किनमा ताम्रे सरकार गम्भीरता सिद्धान्त घे लापन मला विशेषन संक्षेप मला चिसाङ्री ठिम न्यायथेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से कैदी बन्दीला मिलै पोदा सोना लाबारी न्यायरी पहुँच लेन लाबारी मुद्दाला प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित लाबारी थिइन् कारागार ठिम संशोधन लाबारी ब्लोन खाङसे बाङ्लापन मला विशेष संक्षेप मला चिसाङ्री सांसद गते से झेलडी मिलै पोदा नाङबा स्यापा से झेल निमिसिबा यातना पिनमा थेन तोब ग्याङ मलाबा घटनालाई निष्पक्ष छानबिन लासे दोषी द जवाबदेही सुबारी ब्लोन कादेला ध्यान छेङ नलाबु मला चिसाङ्री प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की से झेल निमोबा कैदी बन्दीला पुनर्स्थापना लाबारी प्रभावकारी मनोसामाजिक परामर्श परामर्श पिनमा ठिम सोधोबा थिन न्यायिक ठिम द ज्याबा सुबारी खाम्दोबा ब्राङबा मला विषय सुङसिब मला चिसाङ्री दिम्लोन खाङ लोन्छेन राजकुमार श्रेष्ठ से झेल निमोबा रोगी कैदीला मान्डा से पिनमा ठिम आरेबासे रेङबा दुई दोना मान्चादोबा कैदीदा लोलोन मापदण्ड सोसी मानला सिपिनबा थेन लुइला झाँसला सिपिनबा ठिम सोबारी खाम्दोला विषय सुङसिब मला चिसाङ्री चोहो समीक्षा बास्कोटा से बाल सुधार गृहरीमोबा जाजा कोलाका देला मिलै पो अवस्थालाई फेरि निरीक्षण थिएन अवलोकन प्रतिवेदन 2083 सर्वसम्मति से पारितला सिजिनमा मुला विषय सुङसिब मला सुङ्गुन डोलप्रसाद अरियाल से पर्यटन थुम युल्ला नोर्थुम द ज्याबा सोबारी खाम्बा खाप्पे बिमा ग्रेन्थुम हिन्न विषय सुङसिब मला नेपाल एसोसिएसन फर अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाला नाचुइसे कुचा दिन्छन् गेखोला ट्वाङस्याङ लासिबन सुङ्गुन अरियाल से फिर्का भ्युला टाङ्गा बाबारी खाम्बा चुथुम्ला विकास लाबारी बिनान्थुम डिक्से गेलाबारी खाम्दोला विषय सुङसिब हिन्न सुङ्गुन अरियाल से पर्यटन थुम्ला ठिम थेन संरचना रिमराङमा समस्या द छैन लाबारी सरकार से बाङ्लाबन खाबासे नाटा राङमा व्यावसायिक संगठन से पर्यटन उद्योगलाई विकास लाबारी खाम्दे योगदान लाबारी बाङ्लादोला विषय सुङसिब मला सुङ्गुन अरियाल से नेपाल एयरलाइन्स थेन नेपाल पर्यटन बोर्ड से युल्ला नोर्थुम द ज्याबसुबारी खाम्बा पर्यटन थुम्ला विकास लाबारी इमान्दार तसी गेलाबारी नन मोइजेन लासुब मला चुरानुला से रिमठिम पर्यटन थे नागरिक डेनबोन खड्गराज पौड्याल से युल्ला पर्यटन थुम्ला विकास लाबारी निजी थुम थेन डिक्सी गेलाबारी सरकार से बाङ्लाबन मुला विषय सुङसिब मला नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाला नाचुसे कुसा दिन्छेन गेखोरी लेङमा थान्सिबान ब्लोन पौड्याल से दान्देला सरकार से पर्यटन थुम्ला विकास लाबारी बाङ्लाबन खाप मुला विषय सुङसिब मला युल्ला पर्यटन थुम्ला विकासला से थिमथेन संरचनाला थुम्री माङबान खापा समस्या द छाङनाला बारी राङसे बाङ्लाबान खाप मुला विषय सुङसिबान ब्लोन पौड्याल से निजी थुम्थेन डिक्से नर्थुम्दा कोङबा सुबारी बाङ्लाबान खाप मुला विषय नन सुङसिब मला नेपाल पर्यटन थेन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम से स्नातक थेन स्नातकोत्तर तहरी आरोग्य पर्यटन सम्बन्धीला भ्रिभोडोबा थिम सुबारी छेब मुला विषय नन ब्लोन पौड्याल से सुङसिब मला सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा से दूरसञ्चार सेवाला पहुँच लिन लसै गुणस्तर द ज्याबसुबारी प्राथमिकता पिन्छु गेलाबारी सम्बन्धित निकाय द निर्देशन दोन्सिप मला संचार ब्लोन खाङ्री तिनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण थिए नेपाल टेलिकमला मुन्बिका देथेन काठुई लासुमान ब्लोन डाक्टर तिमल सिन्हा से टेलिफोन थिएन इन्टरनेट सेवा ज्याबा आतना ल्यामान गुनासो खासिटिब मला विषय सुङसिबान सेवा लिन लबा थिएन गुणस्तर द ज्याबसुबारी नियमन लबा थिएन सेवा पिनमान खाबा गुर्ङी छन् परिणाम राङबारी खाम्बा लासै गेलाबारी बाङ्ला दल विषय सुङसिब हिन्ना काठुरी सञ्चार ब्लोन डाक्टर तिमल सिन्हासे नियामक निकाय थेन सेवा पिनमा घोर्ङिनुन पक्ष से राङला जिम्मेवारी द प्रभावकारी रूपले पुरा लाबारी मैजन लासुबान नेपाल टेलिकमलाई हिल्बासे टेलिकम ग्याम हिल्बासे लामन ग्रेन आशा लाबन खाबासे थेनुन अनुसारलाई सेवा पिनमा रिनुन निर्देशन दोन्सुब मला ब्योन गे थिन रोजगार ब्लोन रामजी यादव से युल्ला गे बजार दा ज्याबा सुबारी सरकार से बांगला पनि मला विशेष संक्षेप मला तिने विराटनगर नि महानगरपालिका सोम मदन नगर रि सभा छार गे थिन रोजगार गे दिमला टोंगसेंग लासुमान ब्लोन यादव से रांगला नि हुली मर्यादित सुरक्षित थिन सम्मान लक्ष्यामे गेला बारे खाबा खाम्बा वातावरण सुबारी सरकार से बांगला पनि मला विशेष संक्षेप हिन्ना ब्लोन यादव से नेपाल ला गे बजार ब्योन गदे दा गे पिनमारी सरकार से विशेष बांगला बन खाप मुला विशेष सुंक्षिमान पोबा गे बजार ला माग थेन गेला बा मिसे माई बा तामदा पूरा ला बारी खामबाला लसे गेक्सारेम घी ठीम सोबन मुला विशेषन सुंक्षिप मुला ग्रेन नाम खाबालिचा खाबा भाल से कास्की थेन पर्वत जोंदा थुइबा चाम ब्योंगने लाब मला थेनुन भालले परप्तासी थेनुन मोबा अन्नपूर्ण माता लाथान्डी फसप्ताबा मेन्द सोम्दा सशस्त्र प्रहरी बल से छोनमन उद्धार लाब मला सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर घिची से ब्ली कालिका गन कास्केला ग्रेनपो एसपी बसन्त सिंहला अनुसार तिलमा मुना मेन्द ब्ली रोप रेस्क्यू थेन मेन्द सोम गोता खोर्ला टोली से मेन्दुकीको पुजारी थिएन मेन्दो घिँ मोइबोलाबा मिलासी मेन्दो सुम्ला उद्धार लाभ हिन्ना घटना तबग्लारी जोङ प्रशासन गेदिम कास्केला ग्रेन जोङ अधिकारी कुमान सिंह गुरुङ जोङ प्रहरी गेदिम कास्केला ग्रेन पो एसपी नवीन कार्की थिएन सशस्त्र प्रहरीलाई एसपी बसन्त सिंहला टोली दोबोमोबा चुनुन गुङरी बाजुरा जोङला त्रिवेणी नगरपालिका कु तामसुरी विभाग ग्लारी खाबा ढुइरी परप्तासे माबा निचुइ दिङला प्रतीक्षा थापा शिव अवस्थारी स्यापमुला तेलमा मुना हिंसे ग्रेन नाम ताइबले खाबा ढुइ से तामसु बिबेग्लाला गोरङी दिमगादेनन बोरबमला सुदूर्लु प्रदेशला ग्रेनब्लोन री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाला प्रदेशसभा संसदीय दलला घुवन खगराज भट्ट नियुक्त तापमुला नेपालला हिल्ठिम्ला धारा ग्यार्जिक डुचुसे भ्रेला उपधारा घि अनुसार प्रदेशला ग्रेनपो नजिर मियासे गोवन भट्ट दा ग्रेनब्लोन री नियुक्त लासुबहिन्ना भट्ट सुदूर्लु प्रदेशला न्याछा ग्रेनब्लोन धोशिबमुला सत्ता समीकरण पोपलिसा ग्रेनब्लोन कमलबहादुर साहसे राजीनामा पिनमाली छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश संसदीय दलला गोवन भट्ट छार ग्रेन ब्लोन रे नियुक्त ताबहिन्न चुनन गुङरी सुदूर्नु प्रदेशला छाड्दामा ग्रेन ब्लोन खगराज भट्ट से दान्थेन गोपनीयतालाई घ्रान चस्यु बमुला ग्रेन ठिमखाङसे जनआस्था साप्ताहिकलाई ग्रेन डिखेन किशोर श्रेष्ठदा खाबा लानिरे सोमबार कुनु ठिमखाङरी बाबारी प्रहरीदा आदेश पिनभमला ठिम्पोन्छेनपो बालकृष्ण ढकाललाई यागर इजलासे सङ्गीरबोन श्रेष्ठदा ठिमखाङरी बाबारी आदेश पिनभहिन्ना सङ्गीरबोन श्रेष्ठ लतर्फ ग्याम श्रेष्ठला माइमा सरस्वती श्रेष्ठ से झेल ग्याम तेसी पिनबारी माग्लेबान बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई रिट यो बमुबा रिट्री खाजीबेन आधार आरेना चुङमा विवान श्रेष्ठदा खासी पिनबारी माग्ला बम्बला साङ्गिरबोन श्रेष्ठदा याम्बुजोङ ठिमखाङसे तिनेन प्रहरी हिरासत्रे सोम्रे थानमा रिनुन् अनुमति पिनबमुला ओसेम बागमती प्रदेश रिमुबा सहरका दिँदा व्यवस्थित विकास लाबारी सुबा सहरी ठिम 2083 प्रभावकारी कार्यान्वयन लसलता बमुला व्यवस्थित सहरी विकास त च्यासी प्रदेशला भौतिक पूर्वाधार विकास ब्लोनखाङसे बागमती प्रदेश सहरी ठिम 2083 स्वीकृत लाबली छ कार्यान्वयन लाबारी भाइ बहिन्ना विषय ब्लोनखाङला सुङबोन मदन कुमार आलेमगर से सुङबहिन्ना प्रदेश से नुवाकोट धादिङथेन रसुवाला गोर्सुङ गारी व्यवस्थित सहरी बस्ती विकास लाभ योजना लक्ष्यामरी पाइलट प्रोजेक्ट सोसी गेलाबन मुला बिसिनन सुङबोन आलेमगर से सुङबा मुला धन्दिङ यासुजी ज्ञानसुजी रङ्से तामाङ साङ्ग्युर चुनन साङ्ग्युर गदेला छ्याम्री तिनी दा साङ्ग्युर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमन लासुगु लसो फ्याफुल्ला
1: वर्षा यामसँगै जङ्गल पाखा काठ काठुटा र खाली चौरहरूमा थरी थरीका च्याउ उम्रन्छन्
2: केही च्याउ खान हुने केही च्याउ खान नहुने विषालु हुन्छन्
1: खान हुने र खान नहुने विषालु च्याउ चिन्न गाह्रो हुन्छ
2: नचिनेको जङ्गली र जथाभावी उम्रेका च्याउ खानाले ज्यान समेत जान सक्छ
1: होसियारी अपनाऊ नचिनेको जङ्गली च्याउ नखाऊ

ई रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासे सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल पर्यटन क्षेत्र देशक अर्थतंत्र के रीढ़ रहल बतौलने नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स के एजेंट्स के 59वां वार्षिक साधारण सभाक आई एत उद्घाटन करत ओ विदेशी मुद्रा अर्जन करबाक क्षेत्रक विकासक लेल संबद्ध सब पक्ष क्रियाशील हेबाक लेल जोर देलनि। सभामुख पर्यटन क्षेत्रक नीतिगत आ संरचनागत समस्या समाधानक लेल सरकार गंभीर हेबाक चाही से कहत नाटा जका व्यावसायिक संगठन के पर्यटन उद्योग में विकास के यथाशक्य योगदान करय पड़त से बतौलन। राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइंस और नेपाल पर्यटन बोर्ड देशक आर्थिक उन्नयन दृढ़ मानल गेल पर्यटन क्षेत्रक विकास में ईमानदारीपूर्वक लागा पड़बाक ओ बतौने छलथि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा दूरसंचार सेवा के पहुँच विस्तार संगे गुणस्तर सुधार के पहल प्राथमिकता में राखि का काज कर संबंधित निकाय के निर्देशन दिलने। मंत्रालय में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण और नेपाल टेलीकॉम संघ भेल विचार विमर्श के क्रम में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा टेलीफोन तथा इंटरनेट सेवा कमजोर भेल शिकायत निरंतर आबि रहला से नियामक आ सेवा प्रदायक दुनू के परिणामुखी काज करबाक चाही बतौलन। चालू आर्थिक वर्ष के दूरसंचार क्षेत्र के रूपांतरण के वर्ष के रूप में आगू बढ़ाएल गया से आब काज के नतीजा देखबाक चाही हुनकर कहब छलनि। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा दुर्गम तथा सेवा नहीं पहुँचल क्षेत्र में दूरसंचार पूर्वाधार विस्तारक लेल ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष RTDDF के प्रभावकारी परिचालन करबाक लेल ओ जोर देलनि। संचार मंत्री रुग्ण बनल टावर निर्माण तथा ऑप्टिकल फाइबर विस्तारक आयोजना के तत्काल निष्कर्ष में पहुँचावा एक हफ्ता भीतर विस्तृत कार्ययोजना पेश करबाक लेल निर्देशन देलनि। संगे सड़क विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरण जेहन निकाय संग समन्वय कऽ शहरी क्षेत्र के अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तथा भूमिगत करवला काज के आगू बढ़ाबा सेहो तकेता कयलनि। विचार विमर्शक क्रम में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे RTDF के रकम मार्फत विभिन्न प्रदेश में आगू बढ़ाएल गेल ऑप्टिकल फाइबर विस्तारक कतिको आयोजना तोकल गेल समय में सम्पन्न होबय नहि सकल स्वीकार कयलनि। अहिना नेपाल टेलीकॉम के प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में सैटेलाइट बैंड विथ 4G सेवा विस्तारक लेल उच्च भेला से RTDF के रकम परिचालन करबाक लेल प्रस्ताव कयलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में लगभग 1000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर विस्तार करबाक लक्ष्य राखल गेल जानकारी सेहो देलनि। सरकार निजामती तथा सरकारी कर्मचारी के वैदेशिक भ्रमण के व्यवस्थित मितव्ययी आ नतीजामुखी बनावा नया मापदंड लागू करत कड़ा नियंत्रण के लिए नीति अपनौलक। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सब मंत्रालय आयोग तथा निकाय के परिपत्र जारी करत आब से कोनो वैदेशिक भ्रमण के लिए कर्मचारी मनोनयन कर से पहिनहि पूर्व स्वीकृत लेबाक कड़ा निर्देशन दिलक। पूर्व स्वीकृत बिना कायल जायवला वैदेशिक भ्रमण आ मनोनयन के पूर्ण रूप में रोकक लेल व्यवस्था कार्यान्वयन में आनल गेल अछि। एहि के संगे वैदेशिक भ्रमण से प्राप्त सिखाई के सरकारी संयंत्र भीतर संस्थागत रूप में सदुपयोग कराबल सेहो सरकार कड़ाई कयलक अछि। वैदेशिक अध्ययन भ्रमण तालीम बैठक गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला व सम्मेलन में सहभागी भ कऽ घुरल कर्मचारी स्वयं हासिल कयने ज्ञान सीप आ नीक अभ्यास अन्य कर्मचारी समक्ष अनिवार्य रूप में आदान प्रदान करबाक चाही नियम बनायल गेल अछि। नया मापदंड हिसाबे वैदेशिक भ्रमण कऽ कऽ कार्यालय में हाजिर भेल 5 दिन भीतर संबंधित कर्मचारी स्वयं कार्यरत निकाय के सहकर्मी बीच सिखाई अनुभव आदान प्रदान कऽ लेबय पड़त। काठमांडू विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद में प्राध्यापक डॉक्टर विवेक बराल नियुक्त भेल छथि। प्रधानमंत्री तथा विश्वविद्यालय के उपकुलपति बालेंद्र शाह उपकुलपति छनौर तथा सिफारिश समिति के सिफारिशक आधार पर बराल के नियुक्त कयलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल नवनियुक्त उपकुलपति बराल के आई मंत्रालय में नियुक्ति पत्र प्रदान कयलनि। जेठ 19 गते बैसल काठमांडू विश्वविद्यालय के सीनेट बैठक से नया उपकुलपति नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री पोखरेल के संयोजकत्व में सिफारिश समिति गठन कयल गेल छल। समिति के सदस्य में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य रेशु आर्याल ढुंगाना आ विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष सुरेश राज शर्मा रहल छलथि। वह समिति सिफारिश कयने 3 गोटे के नाम मध्य से प्रधानमंत्री शाह बराल के उपकुलपति में मनोनयन कयलनि। बराल काठमांडू विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक छथि। ओ KU में अध्ययन कऽ कऽ वह विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनय वाला
पहिल व्यक्ति छथि। स्वास्थ्य सेवा विभाग के नियमित खरीद प्रक्रिया अंतर्गत सर्पदंश आ रेबीज विरुद्ध के खोप आयल। स्वास्थ्य सेवा विभागक नियुक्त महानिर्देशक डॉक्टर अनुज भट्टचंद सर्पदंश विरुद्ध के खोप आ रेबीज विरुद्ध उपयोग होबयवला खोप बृहस्पति दिन प्राप्त भेल जानकारी देलनि अछि। हुनक कहब हिसाबे सर्पदंश विरुद्ध के 8,002 से भायल आ रेबीज विरुद्ध के 17,006 से भायल खोप टेकू स्थित केंद्रीय खोप भंडारण केन्द्र में राखल गेल अछि। प्राप्त खोप आवश्यक प्रक्रिया पूरा कऽ 7 प्रदेशक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र मार्फत संबंधित स्वास्थ्य संस्था में वितरण कयल जायत। किछु दिन पहिने रेबीज के खोप सहज रूप में प्राप्त नहीं भेल शिकायत भऽ रहल छल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा के कर्मचारी के शुरू स्केल के आधारभूत तलब में 10% वृद्धि करबाक निर्णय कलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय मधेश भवन में आई बैसल प्रदेश मंत्रिपरिषद के बैठक से आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट वक्तव्य के बुंदा नंबर 111 में कैल गेल नीतिगत व्यवस्था हिसाबे साउन 1 से लागू होबाक निर्णय कलक अछि। कर्मचारी के नया तलब मान ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत केने मंत्रिपरिषद के प्रवक्ता अर्थमंत्री युवराज भट्टराय के जानकारी दिलन। स्थानीय सेवा के कर्मचारी के हक में स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन 2081 के दफा 44 के 8 बमोजिम निर्णय प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कायल जबा को बदलिन। अहिना प्रदेश सरकार कर्मचारी के कार्य संपादन के आधार पर शुरू तलब स्केल के अधिकतम 10% धरि प्रोत्साहन भत्ता देबा कार्यविधि सेहो स्वीकृत कयलक अछि। कार्य संपादन मूल्यांकन में 100 अंक मध्य कमती में 75 अंक प्राप्त करय वाला कर्मचारी मात्र ई भत्ता ल सकत। धनुषा जिला अदालत एक परिवार के 3 के पूर्व पक्ष के लिए कारागार पठेबा लेल आदेश दिलक अछि। दृष्टिबंधक में राखल गेल जमीन बैंक में राखि कऽ 4 करोड़ ठकी केने आरोप में अदालत पूर्व पक्ष के लिए कारागार पठाबा आदेश दिलक अछि। धनुषा के विभिन्न व्यक्ति सब देने अनुचित लेन देन मीटर ब्याज तथा ठगी संबंधी मुद्दा में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 कपिलेश्वर निवासी 53 गोपाल शाह हुनक पत्नी 48 रेखा शाह बेटा 32 हरिराम शाह के साउन 1 पकड़ने छल। अई मुद्दा संबंधी धनुषा जिला अदालत जनकपुर धाम में भेल थुनचेक बहस पश्चात अदालत के न्यायाधीश हीरा माया अवाल के जिला सब 3 के पूर्व पक्ष में पठेबाक आदेश दिल गेल। अदालत के सूचना अधिकारी हेम कुमार महतो के जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे 9 के मुद्दा मध्य 6 मुद्दा में बहस क के पूर्व पक्ष के लिए 3 के करार पठेबाक आदेश भेल आ थप 3 मुद्दा में आई सुनवाई भऽ रहल अछि। अदालत के आदेश संगे पूर्व पक्ष के लिए गोपाल आ हुनक बेटा हरिराम के महतरी कारागार तथा रेखा शाह के सुंदली कारागार पठेबाक तैयारी भऽ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नाव परीक्षक मधुसूदन न्यूपाने के जानकारी दिलन। धान उत्पादन के दृष्टिकोण से अग्रणी प्रदेश के रूप में रहल मध्य प्रदेश में साउन के अंतिम हफ्ता आबि चुकलाक बादो धान खेती होवला क्षेत्रफल के 97.71% में धान रोपाई सम्पन्न भेल अछि। एहि बेर पर्याप्त वर्षा नहि भेलाक बाद बेर बेर होवला सामान्य किस्म के वर्षा तथा विभिन्न नीति तथा सहकारी स्तर के सिंचाई प्रणाली के उपयोग कर किसान साउन के 28 धरि में 1% के क्षेत्रफल में धान रोपाई करय में सफल भेल अछि। मध्य प्रदेश के सीढ़ा तथा बारा जिला में धान खेती होवला जमा क्षेत्रफल के 100% क्षेत्र में धान रोपाई सम्पन्न भेल। कृषि विकास निर्देशालय के निर्देशक जितेंद्र यादव के जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश के जिला सब में हरेक वर्ष खेती होइत आबि रहल 552,745 हेक्टर क्षेत्रफल मध्य 382,433 हेक्टर क्षेत्रफल में धान रोपाई होइत आयल अछि। जाहि मध्य प्रदेश में अखन धरि 373,693.29 हेक्टर क्षेत्रफल में धान रोपाई सम्पन्न भेल। निर्देशालय जानकारी देलक अछि जिलागत रूप में सबसे कम रोपाई महतरी जिला में भेल अछि। आब खेल समाचार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के आयोजना में आवयवला अगस्त 30 सितंबर 12 भादो 14 से लगकर 27 धरि मलेशिया में संचालन होवयवला एसीसी प्रीमियर कप में सहभागिता जनाव जायवला नेपाली पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के आई काठमांडू में विदाई
कैल गेल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ आयोजना केने कार्यक्रम में क्यान के सचिव पारस खटका लगायत पदाधिकारी टोली के सफलता के शुभकामना व्यक्त करैत विदाई कलन। नेपाली टोली प्रतियोगिता पहिने भारत के बेंगलोर में आयोजना होय वाला अभ्यास कैंप में सहभागी भ ओहि दिस प्रस्थान करत। एशिया कप छनौट के रूप में रहल प्रतियोगिता में 10 टोली के सहभागिता रहत, जैमे दू समूह के विभाजन कैल गेल अछि। नेपाल रहल समूह ए में साउदी अरेबिया, आयोजक मलेशिया, बहराइन आ हांगकांग रहल अछि, त समूह बी में यूएई, ओमान, सिंगापुर, कुवैत आ कतार रहल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर सरकार का जोर। विदेश यात्रा के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा में नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के एकजुट होने पर दिया जोर। खगराज भट्ट बने सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री। रोहतक से बोलबम यात्रा के लिए भारत के 3 नेपाली नागरिकों की झारखंड में बस दुर्घटना में हुई मौत। और भारत के राज्य उत्तराखंड में हाइड्रो पावर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर जोर दिया है। कार्यालय के प्रवक्ता हेमराज अर्याल ने बताया कि अब किसी भी कर्मचारी को विदेश यात्रा पर भेजने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। विदेश यात्रा से लौटने के 5 दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारी को अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ यात्रा के दौरान हासिल ज्ञान और अनुभव साझा करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे विदेश यात्राओं की पारदर्शिता, उपयोगिता

0: और उद्देश्य सुनिश्चित होंगे। इसी बीच सरकार ने पिछले वर्ष 23 और 24 भाद्र को हुए जेंजी आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों और शहीद परिवारों के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन के लिए एक समन्वय एवं सहजीकरण समिति का गठन किया है। रोहतास से भारत के झारखंड स्थित देवघर बोलबम यात्रा के लिए गए तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में गरुड़ा नगरपालिका 6 पुठियाही निवासी 60 वर्षीय नवल जायसवाल, उनकी पत्नी और 10 वर्षीय शिवम महतो शामिल हैं। बताया गया है कि 45 तीर्थयात्रियों को लेकर बस रविवार को वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह करीब 3 बजे झारखंड के कोडरमा जिले के सतगांव थाना क्षेत्र में बस और मालवाहक ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घायलों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में बस चालक को नींद आने की आशंका जताई गई है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारण की जांच जारी है। घटना की खबर फैलने के बाद पुठियाही गांव में शोक का माहौल है। मृतकों और घायलों के परिजन आज सुबह ही भारत के लिए रवाना हो गए। नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया है। काठमांडू में आज से शुरू हुई कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि देश में संकट और राष्ट्रीयता के सामने चुनौतियों के बीच कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है। पार्टी के निवर्तमान सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने की पहल करने की बात कही। पूर्व महामंत्री डॉ. शशांक कोइराला ने कहा कि पार्टी को एकजुट बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा आयोजित की गई है और कांग्रेस एकजुट रही तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अन्य नेताओं ने भी वरिष्ठ नेताओं के योगदान और अनुभव को महत्व देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सभा का बंद सत्र कल और परसों चलेगा। सुदूर पश्चिम प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री खगराज भट्ट ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश प्रमुख नजीर मियां ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के इस्तीफे के बाद सत्ता समीकरण में बदलाव के साथ भट्ट को प्रदेश का 5वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भट्ट ने नेकपा एमएलए के 3 मंत्रियों और एक राज्य मंत्री को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया आगामी 1 भाद्र को प्रदेश सभा में विश्वास का मत लेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आज प्रदेश सभा को पत्र भेजा है। प्रदेश सभा की बैठक भी 1 भाद्र को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। नेकपा एमएलए द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री बानिया को विश्वास मत लेना पड़ रहा है। 104 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 53 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा कि कारागार कानून को समयानुकूल बनाने की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि कारागार में बंद निर्दोष जेंजी युवाओं के साथ प्रतिशोध की भावना से व्यवहार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जेंजी आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के विषय में भी सरकार के गंभीर होने की जानकारी दी। बैठक में सांसदों ने कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्था पर जोर दिया। महिला, गर्भवती, दिव्यांग और अन्य संवेदनशील कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। सांसदों ने जेलों में होने वाली मौत, यातना और मारपीट जैसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा बाल सुधार गृहों में यातना और मारपीट खत्म कर शिक्षा, कौशल विकास और खेलकूद की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। नेपाल सरकारकै प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारी सूचनाको प्रवाहको और व्यवस्थित, सरल और प्रभावी बनाने की बात कही है। शिक्षा तथा खेलकुद मंत्रालय में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों और प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मंत्री पोखरेल ने कहा कि सरकार के सभी काम लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुरूप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की दैनिक जरूरतों को केंद्र में रखते हुए सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री पोखरेल ने विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाने का दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र में समयानुकूल नीतिगत सुधार पर केंद्रित है। बैठक में संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने सरकारी सूचनाओं तक मीडिया की आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा सरकार और मीडिया के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी संवाद लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही स्कूल और उच्च शिक्षा को व्यावहारिक, वैज्ञानिक और जनमुखी बनाने के लिए दीर्घकालीन सुधार और शिक्षा नीति में आवश्यक बदलाव की जरूरत बताई गई। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। संचार मंत्रालय में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण और नेपाल टेलीकॉम के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि टेलीफोन और इंटरनेट सेवा कमजोर होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, इसलिए नियामक और सेवा प्रदाताओं को परिणाममुखी ढंग से काम करना होगा। मंत्री तिमल सिन्हा ने दुर्गम और सेवा से वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष यानी RTDF की राशि प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने तथा लंबे समय से रुके टावर निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर विस्तार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। नेपाल टेलीकॉम ने चालू आर्थिक वर्ष में करीब 1,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब दूरसंचार तारों के प्रबंधन और संभव स्थानों पर उन्हें भूमिगत करने पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवा विभाग ने सर्पदंश और रेबीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाले 25,800 वायल टीके प्राप्त होने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार इनमें सर्पदंश के 8,200 और रेबीज के 17,600 वायल टीके शामिल हैं। इन्हें टेकू स्थित केंद्रीय वैक्सीन भंडारण केंद्र में रखा गया है और सातों प्रदेशों के स्वास्थ्य आपूर्ति केंद्रों के जरिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाएगा। इस बीच गर्मी बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश में सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के 27 अस्पतालों और सर्पदंश उपचार केंद्रों में जरूरत के अनुसार एंटी स्नेक वेनम भेजना शुरू कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF, SDRF, ITBP और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कुछ लोगों के अब भी सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है। हादसे से सुरक्षित बाहर निकले लोगों के मुताबिक सुरंग में अचानक तेज रफ्तार से पानी और हवा घुसी, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पीपलकोटी पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर सरकार का जोर। विदेश यात्रा के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा में नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के एकजुट होने पर दिया जोर। खगराज भट्ट बने सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री। रोहतक से बोलबम यात्रा के लिए भारत गए 3 नेपाली नागरिकों की झारखंड में बस दुर्घटना में हुई मौत। और भारत के राज्य उत्तराखंड में हाइड्रो पावर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र।
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
4: *1415# ह्यास डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: झण्डु आयुर्वेद,
6: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
6: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
6: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वेब पोर्टलमा radionepal.gov र radionepalonline.com का अतिरिक्त मिडियम वेबका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू सहित एफएम ब्यान्डका 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा देशका विभिन्न स्थानबाट सुन्न सक्नुहुन्छ।
8: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल सुन्न सकिने एफएम रिले प्रसारण केन्द्रहरू
7: कोशी प्रदेशमा
8: भेडेटार धनकुटा,
7: आइतबारे इलाम,
8: पत्ताले डाँडा सोलुखुम्बु
7: र सिलौटी डाँडा पाँच थर,
8: मधेस प्रदेशमा
7: जितपुर बारा
8: र गौरी डाँडा महोत्तरी,
7: बागमती प्रदेशमा
8: खुमलटार ललितपुर,
7: सिमभन्ज्याङ मकवानपुर
8: र चरीकोट दोलखा,
7: गण्डकी प्रदेशमा
8: दाउन्ने नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व,
7: दुर्लुङकोट पर्वत,
8: पोखरा कास्की,
7: जोमसोम मुस्ताङ
8: र बन्दीपुर तनहु,
7: लुम्बिनी प्रदेशमा
8: सात दो बाटो रोल्पा,
7: बगनास काली पाल्पा,
8: रेसुङ्गा गुल्मी
7: अनि हेमन्तपुर र चौपट्टा दाङ,
8: कर्णाली प्रदेशमा
7: सिमीकोट हुम्ला,
8: खलङ्गा जुम्ला,
7: मानमा कालीकोट,
8: मुर्माटप मुगु,
7: जुफाल डोल्पा,
8: मुस्सीकोट जन्ती बस्ने लेक रुकुम पश्चिम
7: अनि हर्रे र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत,
8: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
7: बुढीतोला कैलाली,
8: खोडपे बैतडी,
7: छापरी दार्चुला,
8: हेमन्तबाडा बझाङ,
7: उडीतोला डोटी
8: र काला जाग्रा पोरखेगढी बाजुरा।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल, नेपालको समावेशी आवाज।

बृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति ही। यो श्लोक भागवत को लगेर सुखदेव परमहंस जो बम पड़काए पनि सुन्दैन थे, मस्त समाधि में रहन्थे, उनको अगाड़ी यो एक श्लोक सुनाई दिए तो उनको समाधि समाधि ताप ठोक्यो, नॉर्मल व्यक्ति बने। फिर अर्को एक श्लोक सुनाए शिष्य द्वारा,